मन्ना डे और साथियों को अभी आपने सुना, और अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

0: श्रोताओं, ज्योतिका राय के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, और अब सुनिए एग्री टिप्स कार्यक्रम।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे मुर्गियों में सफेद व खूनी दस्त के संदर्भ में। सफ़ेद व खूनी दस्त की बीमारी हमारे इन द्वीपों में मुर्गियों में होने वाली एक आम बीमारी है। जब मुर्गियों में इस प्रकार के दस्त लग जाते हैं तब उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर इतनी हो जाती है कि किसान निराश होकर खिन उठता है। जबकि ये रोग असाध्य नहीं है, थोड़ी सी सावधानी रखने से ही इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। सफ़ेद दस्त को पुलोरम रोग भी कहते हैं। ये मुर्गियों का एक घातक रोग है जो कि कीटाणुओं से फैलता है। ये कीटाणु मुख्यतः चूजों पर आक्रमण करते हैं, जबकि ये कभी कभी प्रौढ़ मुर्गियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। प्रायः इस रोग से पीड़ित मुर्गियों में 80% मृत्यु दर देखी गई है। जो भी पक्षी इस रोग से बच जाते हैं उनके अंडों में इस रोग के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ऐसी मुर्गियाँ जो कि इस रोग से बचकर जीवित रह जाती हैं वो नहीं के बराबर अंडा भी देती हैं। इस रोग से पीड़ित मुर्गियां बहुत कम अंडे देती हैं, वे सुस्त व कमज़ोर हो जाती हैं व उनकी आँखें मुरझाई सी लगती हैं। एक सप्ताह से अधिक आयु के चूज़ों को तीव्र प्यास लगती है और वे झुंड में इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। इस रोग में चूजे व मुर्गी दोनों ही सफ़ेद रंग के दस्त करते हैं। यदि मरे हुए चूज़ों के फेफड़ों को देखें तो उन पर खून दिखाई पड़ता है, जिगर पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं व दिल के ऊपरी भाग पर सूजन आ जाती है। किसान भाइयों, ऐसे समय मुर्गियों को उपचार हेतु दवा दे देनी चाहिए। इसके लिए आप पशु चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस रोग में पीने के पानी में एंटीबायोटिक दवा डाल देना भी उपयुक्त होता है। इस उपचार से भी मृत्यु दर कम हो जाती है, लेकिन जो मुर्गियाँ इस रोग से पीड़ित हो चुकी होती हैं उनसे चूजे कभी ना निकालें। सफ़ेद दस्त के साथ साथ मुर्गियों में खूनी दस्त का लग जाना भी एक आम बात है। खूनी दस्त को कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। ये दस्त प्रायः 8 प्रकार के कीटाणुओं द्वारा फैलते हैं, जिनमें से 2 बहुत ही भयानक व घातक होते हैं। ये रोग प्रायः मुर्गी घर में गंदगी व गीले लिटर के कारण हो जाता है। इस रोग के होने पर चूजों व मुर्गियों को खूनी दस्त हो जाता है। चेहरा व पिंडलियाँ मुर्गियों की ढीली पड़ जाती हैं और वे उदास से लगते हैं। उनके पंख नीचे लटक कर बिखर जाते हैं।

0: चलते समय वे लड़खड़ाते हैं और अंत में जब लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाती है और रोग का प्रभाव ज़्यादा होता है तो मुर्गी मर जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु आपको तुरंत विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। अतः किसान भाइयों, बताए गए सावधानियों को आप बरतेंगे और लक्षणों के आधार पर अगर तुरंत उपचार कराएंगे तो सफ़ेद व खूनी दस्त से मुर्गियों में होने वाली मृत्यु दर को रोक सकते हैं और मुर्गी पालन से लाभ उठा सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। आज की जानकारी का विषय था मुर्गियों में सफ़ेद व खून दस्त। आपको जानकारी दे रहे थे शिबू जॉर्ज।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री

0: अरकानी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral meeting with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio shared US's perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. He called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing company Jeff Shockey in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, scaling supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The government has published draft rules under the VVG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the State Health Scheme, Swasthya

0: साथ ही विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द आयुष्मान भारत स्कीम. द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कनेक्शन विद द आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर विल बी साइंड इन जून इन न्यू दिल्ली. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendra in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed before the court at Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Mateen Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tawseef Attar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. US President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Mr. Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said that he has spoken with leaders from Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baqai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week, but warned that did not mean agreements would be reached on key issues. In IPL cricket, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. सवेरे के 6:10 हो गए हैं. अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम. जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा. दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा. एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा. दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा. एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा. एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप जाने के लिए आज शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा.

Can we north the passage? स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 25 तारीख को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप के लिए कल सोमवार 25 मई को सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप जाने के लिए कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा, दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल

25 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर बाद दोबरे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप के लिए कल शाम 5 श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम के सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, आज बातें हवा की। दोस्तों, हवा जो दिखती नहीं लेकिन हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। कभी ठंडी सी झोंके बनकर चेहरे को छू जाती है तो कभी तेज चलकर मौसम का रुख ही बदल देती है। और अगर मौसम का मिजाज खूबसूरत हो और साथ हम सफर का हो तो फिर सफर यादें बन जाती है।

0: घटा के साथ साथ,
1: अरे रे रे।
0: घटा के संग संग,
1: संभालना।
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल।

दोस्तों, जब हवा में हल्की सी खुशबू घुल जाए, मौसम अपनी ठंडी सी जादू भरी चादर ओढ़ ले और दिल में किसी अपने के लिए प्यार चुपके से जागने लगे, तो हर तरफ एक अलग ही सुकून छा जाती है और फिर लगता है कि ये जिंदगी सच में हसीन है और हर लम्हा एक खूबसूरत सा एहसास है।

दोस्तों, कभी कभी हवा गा रही होती है, फिजा गुनगुना रही होती है, ऐसे में दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है और एक सवाल भी, क्या ये सिर्फ मौसम का जादू है या फिर प्यार का कोई एहसास जो हवा के साथ छुपकर आ गया है।

0: दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस सफर में आज बस इतना ही। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शबाना को दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी शबाना। सवेरे के 6:30 हुए हैं और अब सुनिए रामचरितमानस गान की 248वीं कड़ी। गायक कलाकार है श्रीकांत पारगांवकर।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की 248वीं कड़ी। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक क्षेत्र में भारी वर्षा होगी। मछुआरों को आज दोपहर तक के मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को आगाह किया जाता है कि वे समुद्र में न जाएं। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। तो ये थी मौसम की जानकारी। और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे उदित नारायण और इकबाल बानो। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 विश्व फुटबॉल दिवस और वीर सावरकर जी की जयंती पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जतिन भट्टाचार्य का सरोद वादन होगा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे जनता जंक्शन कार्यक्रम। दिन के 11:30 पर आप सुन पाएंगे रूना लैला, पेनाज मसानी और चंदन दास को। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर पुराने फिल्मी गाने आप सुनेंगे व राष्ट्रमंडल दिवस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे मेहंदी हसन और अनुराधा पौडवाल। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर डॉक्टर रितु सिंह के साथ ली गई भेंटवार्ता का विषय रहेगा बच्चों में डायरिया, बचाव और इलाज व राष्ट्रमंडल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस पर चर्चा होगी। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3:00 सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप सवाई गांव के चर्च ऑफ द टेरेंस फिगरेशन द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत सुनेंगे। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण होगा और शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 निंजम मरपदले के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ राष्ट्रमंडल दिवस पर चर्चा होगी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे संगीत संगिनी कार्यक्रम। धरती के गीत कार्यक्रम में 6:30 पर आप गुजराती लोकगीत सुनेंगे। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। संध्या 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युववाणी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम। 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरवगान कार्यक्रम। व रात 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेशमंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं

0: आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्ध त्रिवादने मुम्बई इण्डियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं और अब सुनिए जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 94% तथा न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.3 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38।

और अब सुनिए उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। तो ये थी उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देश रागिनी कार्यक्रम और ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 8:30 पर गायक होंगे उदित नारायण और इकबाल बानो। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 विश्व फुटबॉल दिवस और वीर सावरकर जी की जयंती पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर चर्चा की जाएगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सवेरे 9:30 पर जतिन भट्टाचार्य का सरोद वादन आप सुनेंगे। सुबह 10 लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा और दिन के 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम जनता जंक्शन। 11:30 पर आप सुन पाएंगे चंद खूबसूरत गजलें जिसमें कलाकार होंगे रूना लैला, बिनाज मसानी और चंदन दास। दोपहर 12 तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर पुराने फिल्मी गाने आप सुनेंगे व राष्ट्रमंडल दिवस पर चर्चा होगी। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे मेहंदी हसन और अनुराधा पौडवाल। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर

0: 1:30 पर डॉक्टर ऋतु सिंह के साथ ली गई भेंट वार्ता का विषय रहेगा बच्चों में डायरिया, बचाव और इलाज तथा राष्ट्रमंडल दिवस व विश्व फुटबॉल दिवस पर चर्चा की जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली के लाल किला मैदान में किया जाएगा। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। रंगत के सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा 13 जून को रंगत मानसून मैराथन 2026 का आयोजन और एमवी स्वराजदीप की 26 मई की विशाखापट्टनम यात्रा के लिए बचे हुए टिकटों की बिक्री कल की जाएगी। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। भारत के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा विराट जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली के लाल किला मैदान में आज किया जाएगा। इस विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश भर के 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के लगभग 1.5 लाख प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस विशेष आयोजन में 5 स्थानों से शोभा यात्राएं निकाली जाएगी, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय महिला पुरुष शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपनी संस्कृति परंपरा का प्रदर्शन करेंगे। शोभा यात्रा का समापन लाल किले के मैदान में जनसभा के आयोजन के साथ होगा। इस विराट शोभा यात्रा के जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने के लिए द्वीप समूह से भी छोटा नागपुरी मूल के 12 जनजातीय समूह के कुल 133 प्रतिनिधियों का एक दल दिल्ली पहुंच चुका है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव में कल 2 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। पहले सत्र में सलाम बॉम्बे दिखाई गई, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर ने किया है। वहीं दूसरे सत्र में RRR का प्रदर्शन किया गया, जिसका निर्देशन SS राजामौली ने किया है। फिल्म फेस्टिवल के तहत कल इच्छुक प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क शॉर्ट फिल्म मेकिंग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में फिल्म मेकर संहिता वेदा आचार्य ने रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रतिभागियों को फिल्म डायरेक्शन की बुनियादी जानकारी, सिनेमेटोग्राफी तकनीक, विजुअल नैरेटिव एवं कैमरा कंपोजिशन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया। इसी श्रृंखला में 29 और 30 मई को भी विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाएगी। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा दक्षिण अंडमान जिले में 11 मई से पशुओं के लिए सामूहिक कृमिनाशक अभियान शुरू किया गया है। आगामी मानसून एवं मुंह और खुर से संबंधित रोगों के टीकाकरण अभियान को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम एहतियाती स्वास्थ्य उपाय के रूप में चलाया जा रहा है। यह अभियान दक्षिण अंडमान जिले के सभी पशु चिकित्सालयों, डिस्पेंसरी एवं उपकेंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान पशुपालकों को नियमित डिवॉर्मिंग के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 144 गायों और 14 भैंसों का कृमिनाशन किया जा चुका है, जिससे जिले के 38 पशुपालकों को लाभ मिला है। विभाग ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे फील्ड में कार्यरत पशु चिकित्सा कर्मचारियों का सहयोग करें और

अपने पशु के बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए इस सामूहिक कृमिनाशक अभियान का लाभ उठाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, रंगत मानसून मैराथन और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सहायक आयुक्त कार्यालय रंगत द्वारा PRI एवं विभिन्न विभागों के समन्वय से 13 जून को सुबह 5:30 बजे रन फॉर हेल्थ यूनिटी एंड एनवायरनमेंट विषय पर रंगत मानसून मैराथन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और सामुदायिक भावना का उत्सव मनाना है। मैराथन में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की जाएगी। दोनों वर्गों में विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं पदक प्रदान किए जाएंगे। सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों तथा आम जनता से इच्छुक प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए 9434270758 पर संपर्क किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो और जो अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। यह पुरस्कार बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। 31 जुलाई तक 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट सार्वजनिक योगदान दिया हो नामांकन के पात्र होंगे। पुरस्कार के लिए नामांकन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य संबंधित संस्थानों से आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है तथा नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई तक है। सेलुलर जेल में आयोजित होने वाला ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आज से पुनः शुरू किया जाएगा। सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आम जनता और पर्यटकों के लिए यह शो फिर से शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम के पुनः संचालन से पर्यटकों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और सेलुलर जेल की गौरवगाथा को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से निर्धारित समय पर पहुंचकर शो का आनंद लेने की अपील की है। MV स्वराजदीप 26 मई को विशाखापट्टनम के लिए प्रस्थान करेगा। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से आरक्षित कोटे में उपलब्ध अप्रयुक्त अथवा सरेंडर किए गए टिकटों की बिक्री आम जनता के लिए कल सुबह 11 बजे से की जाएगी। यात्री टिकटों की बुकिंग DSS ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टिकट स्टार्स टिकटिंग काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ई टिकटिंग पोर्टल से जुड़ा एक QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल और 26 मई को शोलबे में आधार शिविर लगेगा। आम जनता से इस विशेष आधार शिविरों का लाभ उठाने को कहा गया है। दक्षिण अंडमान जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर भर्ती के लिए सीधे साक्षात्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 से 40 वर्ष के 10वीं कक्षा पास उम्मीदवार जो दक्षिण अंडमान जिले का निवासी हो वो इसके लिए पात्र है। भर्ती के दौरान उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने नेशनल वॉलेंटियर फोर्स, होमगार्ड या केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों में सेवा दी हो। आवेदन जिला नियंत्रण कक्ष में जमा किए जा सकते हैं। साक्षात्कार की तारीख, समय और जगह की घोषणा बाद में की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली के लाल किला मैदान में किया जाएगा। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से आयोजित चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है। रंगत के सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा 13 जून को रंगत मानसून मैराथन 2026 का आयोजन और एमवी स्वराजदीप की 26 मई की विशाखापट्टनम यात्रा के लिए बचे हुए टिकटों की बिक्री कल की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं और अब सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का देश रागिनी कार्यक्रम में। दोस्तों, अपने देश की मिट्टी की बात क्या कहूँ। याद आती है गांव की हवा, नदियों की लहरें, लोगों का अपनापन और मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू। हम अपने देश से चाहे कितने दूर चले जाएं, पर अपने देश, अपने मातृभूमि और उसकी मिट्टी से जो जुड़ाव होता है वो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा दिल में बसा रहेगा।

दोस्तों, भारत की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, वीरता और एकता हमें याद दिलाती है कि हमारा देश पवित्र, रंगीन और प्रेम से भरा हुआ है, जहां हर हवा, हर मिट्टी का कण देशभक्ति से महकता है।

देश रागिनी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं, अब सुनिए।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आपका स्वागत है इस खूबसूरत सुबह में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। उगते सूरज की रोशनी और दिलों में नई उम्मीदों के साथ आइए करें आज के दिन की एक शुरुआत। सफलता हमेशा अच्छे विचारों और निरंतर प्रयासों से जन्म लेती है। जो इंसान हर सुबह नई सोच के साथ उठता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो श्रोताओं, मुस्कुराइए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है खुदगर्ज, आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की, व तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

0: move ahead with Toyota.
1: श्रोताओं अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में खून का कर्ज फिल्म का गाना बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
9: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:47 तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं करण और अर्जुन फिल्म का गीत, साधना सरगम मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वरों में, रचनाकार इंदीवर, गीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कोयला फिल्म का गीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में, बोल इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन का।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं।

0: इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा

0: की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ यह उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान

आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गजलें। तो श्रोताओं, पहले पेश है उदित नारायण के स्वर में फैज अनवर का कलाम।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और इकबाल बानो की आवाज़ों में चंद खूबसूरत गज़लें।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल

0: यूविन पर रजिस्टर करना मत भूलना।
1: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे बाल जगत।

जगत कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सभी नन्हे दोस्तों को आपकी रीता दीदी का बहुत सारा प्यार। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी समर ब्रेक का आनंद तो ले ही रहे होंगे, है ना? साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, है ना? तो दोस्तों, चलो मैदान की ओर चलते हैं। मोबाइल को कहते हैं बाय बाय और फुटबॉल को करते हैं हाय। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज आपसे एक सीधा सा सवाल आपकी रीता दीदी की ओर से। वो कौन सी चीज है जो गोल है, जिसके पीछे 22 जोड़ी पैर दीवानों की तरह दौड़ते हैं और जब वे जाल से टकराती है तो पूरा मैदान गोल के शोर से गूंज उठता है? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। वाह है हमारी प्यारी फुटबॉल। आजकल हम सब मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर गेम खेलते हैं, पर सच बात बताओ दोस्तों, क्या उंगलियां चलाने में वो मजा आता है जो मैदान में हवा से बातें करते हुए दौड़ने में आता है? असली मजा तो तब है जब पसीना बहे, दिल की धड़कनें तेज हो और आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाए, है ना दोस्तों? दोस्तों, फुटबॉल खेल नहीं, एक सुपर पावर है। जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो सिर्फ बॉल आगे नहीं बढ़ती बल्कि आपके अंदर की कई सुपर पावर जाग जाती है। फुटबॉल खेलने से आपके पांव मजबूत भी होते हैं दोस्तों और आपकी दौड़ने की रफ्तार भी तेज हो जाती है। बॉल आपके पास आ रही है, अब क्या करना है? पास देना है या सीधा गोल करना है? यह फैसला आपको एक सेकंड के हिस्से में लेना होता है। इससे आपका दिमाग मजबूत भी होता है और आपके दिमाग में फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। फुटबॉल कभी अकेले नहीं जीती जाती। जब आप अपने दोस्तों को पास देते हैं और वो गोल करता है तो जो खुशी मिलती है वही असली टीम वर्क है ना? यह खेल हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाती है दोस्तों। सोचिए, दुनिया के महान खिलाड़ी और हमारे अपने देश के गौरव सुनील क्षेत्री, ये सभी कभी आपकी तरह छोटे बच्चे हुआ करते थे। इन्होंने वीडियो गेम खेलकर नहीं बल्कि कड़कती धूप और मिट्टी के मैदान में पसीना बहाकर दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। दोस्तों, आप खुद से एक वादा करिए, मोबाइल वाले गेम को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, अपनी अलमारी से फुटबॉल निकालिए, उनमें हवा भरिए, दोस्तों के दरवाजे खटखटाइए और चिल्लाकर कहिए, चलो भाई मैदान बुला रहा है। मैदान पर गिरते संभलते सीखेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जब आप दौड़ेंगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा।

तो मेरी प्यारी दोस्तों, उठिए और चलिए, बॉल को किक मारो और बोलो लेट्स फुटबॉल, मैदान में मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप एक फुटबॉल मैच को देखते हैं या खुद मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक बॉल और दो गोलकीपर नहीं होते, वहाँ छुपा होता है मजा और जीवन के कई बड़े सबक। एक फुटबॉल मैच हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे एक चैंपियन की तरह जीना चाहिए। फुटबॉल मैच की सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि मैदान पर कोई एक अकेला खिलाड़ी जादू नहीं कर सकता। गोल करने के लिए गोलकीपर से लेकर डिफेंडर और फॉरवर्ड खिलाड़ी तक सबको एक चेन की तरह मिलकर काम करना पड़ता है। जिंदगी में भी असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपने दोस्तों, परिवारों और टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल मैच पूरे 90 मिनट का होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीम कुछ मिनट तक हार रही होती है, लेकिन आखिरी मिनट में एक ऐसा गोल होता है जो पूरे मैच का पासा पलट देता है। जब तक मैच खत्म ना हो जाए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आखिरी सेकंड तक की गई कोशिश आपको विजेता बना सकती है। मैच में एक रेफरी भी होता है दोस्तों। अगर कोई खिलाड़ी गलत तरीके से किसी को गिराता है तो उसे रेड कार्ड मिलता है। खिलाड़ी बिना बहस के रेफरी की बात मानते हैं। नियमों का पालन करना हमें एक अच्छा और अनुशासित इंसान बनाती है। मैदान हो या स्कूल, हमेशा हमारी सुरक्षा और बेहतरी के लिए होते हैं। एक मैच के दौरान खिलाड़ी ना जाने कितनी बार फिसलता और गिरता है, उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन क्या वो कभी बैठ कर रोने लगता है? नहीं, वो तुरंत उठता है, धूल झाड़ता है और बॉल के पीछे दोबारा दुगनी ताकत से दौड़ने लगता है। गलतियां या सफलताएं लाइफ का हिस्सा।

है ना दोस्तों, अगर आप किसी चीज में पीछे रह जाते हैं या हार जाते हैं तो निराश मत होइए, उठिए, सीखिए और दोबारा कोशिश कीजिए। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो गेम में गोल करने से आपकी उंगलियां तो तेज हो जाती हैं, लेकिन मैदान में असली फुटबॉल मैच खेलने से आपका शरीर मजबूत और दिमाग फौलादी बन जाता है। आज ही मोबाइल को रखिए साइड दोस्तों, पैरों में पहनिए जूते, उठाइए अपनी फुटबॉल और निकल पड़िए मैदान की ओर। मैदान आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि असली हीरो स्क्रीन पर नहीं, मैदान पर पसीना बहाने से होती है। चलो खेले, चलो दौड़े।

दोस्तों, 27 मई हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण दिन है। हमारे प्यारे चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि। वही चाचा नेहरू जो लाल गुलाब अपनी अचकन पर सजाते थे और जिन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। हम उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हम सब बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सिर्फ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता भी थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश को संभालने और आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई। हम जो बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, एनिम्स, अस्पताल, आईआईटी और बड़े बड़े बांध देख रहे हैं ना, उन सब की नींव चाचा नेहरू जी ने ही रखी थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेहरू जी को बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते?

वे मानते थे कि बच्चे किसी भी देश का असली धन और भविष्य होते हैं। उनका कहना था, दोस्तों, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। हम उन्हें जिस तरह पालेंगे और बड़ा करेंगे, वही देश का भविष्य तय करेगा। यही वजह थी, दोस्तों, कि उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों के बीच आते ही थे। वे खुद भी एक बच्चे की तरह हंसते खेलते रहते थे। उनकी पुण्यतिथि पर आइए हम उनके जीवन से कुछ अच्छी बातें सीखें और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश करें। नेहरू जी को किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने जेल में रहने के दौरान भी भारत की खोज जैसी महान किताब लिख डाली। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपनी पढ़ाई और सीखने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाचा नेहरू को पेड़ पौधों, पहाड़ों और जानवरों से बहुत लगाव था। वे मानते थे कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दुनिया को पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब था, दोस्तों, कि सब मिलजुल कर और शांति से रहें। वे बच्चों को भी यही सिखाते थे कि कभी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर हमेशा रहना चाहिए। चाचा नेहरू ने देश को जब अलविदा कहा, उनके विचार, बच्चों के लिए उनका प्यार हमेशा हमारे पास रह गया। उनकी पुण्यतिथि पर उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब खूब मन लगाकर पढ़ें, अनुशासित रहें, नए नए आविष्कार करें और बड़े होकर अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। दोस्तों, जब भी हम सफेद टोपी, शेरवानी और उन पर लगे एक खूबसूरत लाल गुलाब के फूल को देखते हैं, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, हमारे प्यारे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू बच्चों से इतना प्यार किया करते थे कि विदेश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद बच्चों के बीच जाकर खुद भी बच्चे बन जाया करते थे। नेहरू जी कहते थे, सिर्फ स्कूल की किताबों में डूबे मत रहो, जब तुम बाहर जाओगे तो सितारों को देखोगे, पहाड़ों को निहारोगे, पेड़ों और नदियों से बातें करोगे। यह प्रकृति एक खुली किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कितनी खूबसूरत बात है ना। चाचा नेहरू चाहते थे बच्चे सिर्फ रटू तोता ना बने, बल्कि तितलियों के पीछे भागे, फूलों को खिलते देखे और चिड़ियों की सुरीली आवाज सुने। इससे हमारा दिल और दिमाग दोनों बहुत सुंदर बनते हैं। नेहरू जी का एक और संदेश है, दोस्तों, डरना सबसे बुरी बात है। जो बच्चे निडर होते हैं, वे कभी कोई गलत काम ही नहीं करते। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी से डरने की क्या ही जरूरत है। हमेशा सच का साथ दो और बहादुर बनो। बिल्कुल सही बात है। चाचा नेहरू बच्चों को साहसी देखना चाहते थे। वे कहते थे कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो डरकर उसे छिपाओ मत, बल्कि सच बोलकर उसे सुधारने की हिम्मत रखो। चाचा नेहरू बच्चों के बारे में एक बात कहते हैं कि जब मैं बच्चों के बीच होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ। मुझे सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या देश का हो। बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाचा नेहरू का यह संदेश आज के समय में बहुत जरूरी है। वे चाहते थे कि बच्चे आपस में कभी न लड़ें, स्कूल में हर बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और सब मिलजुल कर रहें। चाचा नेहरू का एक मशहूर नारा है, दोस्तों, शायद आपने सुना हो, आराम हराम है। उनका मानना था कि आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, चित्रकारी करो, लेकिन कभी खाली और आलसी बनकर मत बैठो। चाचा नेहरू के इन संदेशों को सुनकर हमें यह समझना होगा कि हम इस देश के भविष्य हैं। अगर हमारे नन्हे दोस्त अच्छे बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, पेड़ पौधों से प्यार करेंगे और बहादुर बनेंगे, तभी हमारा भारत देश भी महान बनेगा।

नहीं दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई महान स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने हमारे देश में लोगों की उन्नति और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की। सावरकर जी जब छोटे थे ना, तब से उनके मन में देश को आजाद करने की तीव्र इच्छा थी। जब वे मात्र 15-16 साल के थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मित्र मेला और बाद में अभिनव भारत सोसाइटी नाम के एक ग्रुप बनाए, जिनका मकसद बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था। वे बहुत ही साहसी और निडर बच्चे थे। एक बार जब अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़कर पानी के जहाज से इंग्लैंड से भारत ला रही थी, तो वे फ्रांस के पास समुद्र में कूद गए और तैरकर किनारे तक पहुंच गए। उनकी इसी बहादुरी और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के कारण लोग उन्हें आदर से वीर सावरकर कहने लगे। अंग्रेजों ने उन्हें 2 बार आजीवन कारावास यानी कि करीबन 50 साल की सजा सुनाई और अंडमान की मशहूर काले पानी में बंद कर दिया। यहाँ उन्हें बहुत कष्ट दिए गए। कोलू से तेल निकलवाया गया, लेकिन वे डिगे रहे, कभी हार नहीं मानी, ना किसी से वे डरे। जेल में उन्हें लिखने के लिए कागज पेन नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद उन्होंने जेल की दीवारों पर कंकड़, कीलों और कोयले से हजारों लाइन की देशभक्ति कविताएं लिखी और उन्हें याद कर लिया। सावरकर जी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं लड़े, बल्कि वे समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करना चाहते थे। उन्होंने जात पात और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने रत्नागिरी में एक पतित पावन मंदिर बनवाया जहां सभी जाति के लोग एक साथ जाकर पूजा कर सकते थे। उनका मानना था कि जब तक पूरा समाज एक नहीं होगा, देश मजबूत नहीं बन सकता है। वे एक बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने संग्राम की बातों को अपने किताब में शामिल किया। उन्होंने भारत की आजादी की पहली लड़ाई को अपने सुरीले शब्दों में बयां किया। बच्चों, वीर सावरकर जी जो थे, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें सीख दी है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और उन्होंने कहा, किताबों से प्यार किया कीजिए, हमेशा पढ़ते और लिखते रहिएगा। उन्होंने जेल की कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई और कला को कभी नहीं छोड़ा, वे हमेशा साथ लेकर चलते रहे। देश के प्रति उनके मन में बहुत सारी कर्तव्य की भावना रही। उन्होंने अपने देश से प्यार करना सीखा और एक अच्छा नागरिक बनने की सभी को प्रेरणा दी और खुद भी बने। दोस्तों, वीर सावरकर जी का एक खूबसूरत नारा रहा, शायद आप

आपने सुना हो, जरूर सुना होगा, वीर सावरकर अमर रहे और सभी कहते हैं भारत माता की जय, जो कि हमारे देश को एक गौरवान्वित क्षण प्रदान करता है। उनके द्वारा दिए गए हर संदेश लोगों के जीवन को एक सुनहरे अक्षर में पिरोता है। तो हम सभी को ये प्रण लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सभी उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, क्योंकि आप बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है ना। अगर आप देश को संभाल कर रखेंगे तो देश उन्नति की ओर अग्रसर होता रहेगा।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस

0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनने जा रहे हैं ज्योतिन भट्टाचार्य का सरोदवादन। इनके साथ तबले पर संगत किया है महापुरुष मिश्रा ने। तो सुनिए ज्योतिन भट्टाचार्य का सरोद पर बजाया राग मारवा, जो 3 ताल में निबद्ध है।

0: मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं
1: हाँ। तो
2: दशमलव 6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:02 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश
4: हेलो फरमाइश
3: हेलो फरमाइश
5: हेलो फरमाइश
3: हेलो फरमाइश

0: श्रोताओं, जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है हर दिन अपने लिए कुछ अच्छे पल जरूर निकालिए, क्योंकि भाग दौड़ भरी इस दुनिया में सुकून वही पाता है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना जानता है। नमस्कार दोस्तों, सुरों और बातों से सजी इस प्यारी महफिल हेलो फरमाइश में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्रीविद्या और अब से लेकर इस कार्यक्रम के आखिर तक हम रहेंगे आपके साथ आपकी पसंद के शानदार गीतों और कुछ दिलचस्प बातों के साथ। अगर आप भी इस महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए फोन कॉल के जरिए। हमारे नंबर्स हैं 232-558 और 232-540 और एसटीडी कोड है 03192। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमसे अपनी फरमाइशों और संदेशों के साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, हमारी बात किन से हो रही है? हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हमारी बात किन से हो रही है?
1: जी जी, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना?
0: नमस्कार अनूप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी
0: जी, आप तो इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं।
1: मैम
0: जी, जरूर।
1: सांस और विश्वास
0: जी,
1: सांस और विश्वास दोनों अलग अलग नाम है, पर काम एक ही करता है। सांस जाए तो शरीर खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता, है ना?
0: जी बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, और क्या कहूँ, मतलब हमारे जो है, ये एक रिश्ता जुड़ गए हैं, है ना
0: जी।
1: और इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: जी,
1: नाम है यादों की कसम और गाने का बोल ऐसे है, सारी खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीन मिट्टी।

0: दिलाया, ऐसे करके गाने हैं।
1: जी बहुत ही
0: और
1: अच्छा गीत चुना है आपने, ये गीत
0: उसको तो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। पहले
1: जी जरूर।
0: है हमारे बहुत रंगठिया दोस्त थे जिसका नाम है बसंती लाल सूर्यवंशी जी और विजय सिंह लखेरा जी, श्रीकांत जोशी जी और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी और ओम प्रकाश सिनेमा जी, और है हमारे सिस्टर है जिसका नाम है क्षिप्रा क्षिप्रा जी और सप्तमी कुंडू जी के लिए, और है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जिस लखनऊ से बिलोंग करते हैं राहुल भाई के लिए, और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है उसके लिए, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम इस हेलो फरमाइश
1: जी जी
0: सबके लिए,
1: अनूप जी,
0: और
1: आइए
0: खास करके
1: आपके सारे
0: मैम
1: दोस्तों
0: आपके
1: के
0: लिए।
1: साथ प्यार और तारीफ से भरे सुरीले गीत का आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी। हेलो फरमाइश, हमारी बात किन से हो रही है?
1: जी मैडम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
1: जी, मैं पानी को पास से जॉन जस्टन बोल रहा हूँ।
0: जी जॉन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कार निकोबार में रहते हैं?
1: जी मैम।
0: खूबसूरत निकोबार द्वीप से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं?
1: नहीं मैडम, उससे भी पहले जुड़ चुके हूँ मैं।
0: जी अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: जिंदा दिल फिल्म से हैं, गाने के बोल है इकरार हो न जाए।
0: जी बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने। क्या आप इस गीत को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: मैं सिर्फ अपना घर वाले को डेडिकेट करना चाहूँगा। फिलहाल तो मैं अभी ड्यूटी पे हूँ हॉस्पिटल में।
0: आप हॉस्पिटल में काम करते हैं?
1: जी सर। जी मैम, मेरा पार्ट टाइम जॉब है कैंटीन में।
0: जी जी, तो क्या आपका यहाँ श्री विजयपुरम में आना होता है?
1: जी मैम, कभी कभार, शायद एक साल और एक साल के बाद मैं आता हूँ।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं आप?
1: जी।
0: तो चलिए जॉन जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, हमारी बात किन से हो रही है?
1: जी मैं ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम बोल रहा
0: हूँ। प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनवाए हम आपको? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: जी कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और अच्छा लग रहा है।
0: जी बताइए कि कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी फिल्म का नाम है आपकी कसम, और गाने की कौन है सारी रात हम।
0: जी सुन पाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। प्रेम सिंह जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
1: जी मौसम बताऊँ आपको, दिन हो गए लगातार 40 डिग्री के करीब हवा चल रहा है, और 4-5 तेज हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छा मौसम, बारिश नहीं हुई अभी?
1: जी बारिश नहीं है, बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से बारिश होगी यहाँ।
0: जी जी आशा करते हैं,
1: लेकिन अभी तो आपको बताऊंगी काफी तेज हवाएं चल रही है और कम हवाएं।
0: जी तो आशा करते हैं आपके शहर का मौसम बहुत जल्द ठीक हो जाए। जी
1: मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं।
0: जी
1: जी और हेलो फरमाइश, नियमित होता हूँ तो खास करके इंतजार रहता है रविवार का।

0: जी, अच्छा लगता है हमें आप सबसे जुड़कर, आपसे बातें कर करके
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगता है। तो सुनवा रहे
1: जी, मेरे
0: हैं।
1: दोस्त है भगवान सिंह परमार, लोके दोनों लोकेंद्र वर्मा, कैसे सिंह राजपूत, आरोमीर अंसारी और आकाशवाणी से चली जी, आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी और कानपुर से पूनम जी।
0: जी तो सुनिए आप अपने सभी दोस्तों के साथ फिल्म आपकी कसम फिल्म का ये गीत।
1: जी थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, सबसे पहले अपना नाम और पता बता दीजिए।
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम चीतक से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: अमर सिंह साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: अच्छे मैम, और आप कैसी हो मैम?
0: हम भी ठीक हैं, अच्छे हैं। और बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: मूवी का नाम है बरसात की रात। गाने के बोले मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, और कुछ दोस्तों को मैं याद कर लूँ आपकी इजाजत हो तो।
0: जी जरूर।
1: माईलाल चंदेल जी है, अनिल कुमार भट्टाचार्य जी है, और गोल्डी है, पूरन जी है, और अविनाश जी है, और वो रमेश प्रजापति है, और आपको और सभी को जितने सुन रहा है अभी उन सभी को गाने डेडिकेट रहेगा मैम।
0: जी सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। बताइए अमर सिंह जी, आज रविवार है तो क्या करने का सोचा है?
1: अरे कुछ नहीं मैम, हम तो बहुत गर्मी पड़ रही मैम, जहाँ तो कूलर चला के गेट रहते हैं मैम, हम तो सो रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं काम तो।
0: जी तो आप शायद बहुत दिनों बाद आप हमसे जुड़ रहे हैं ना?
1: हाँ जी मैम, जी मैम बिजी रहता है बहुत, तो फिर हम ट्राई थोड़ी बहुत कर लेते हैं और बस फिर नहीं करते हैं, परेशान हो जाते हैं जब भी।
0: जी व्यस्त दिनचर्या है आपकी तो, पर समय निकाल लेते हैं रेडियो सुनने का आप?
1: जी मैम रेडियो तो हम रेगुलर सुनते हैं मैम, बिल्कुल।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें हुई। तो सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत, फिल्म है बरसात की रात।
1: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस समय आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुन रहे हैं। समय बता दें आपको, इस समय सुबह के 10:36 हुए हैं। अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: जय माता दी।
0: जय माता दी। जी, हमारी बात किन से हो रही है?
6: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला से बोल रहा हूँ।
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
6: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो और वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है?
0: यहाँ का मौसम गर्मी भी है, कभी कभी बारिश भी होती है।
6: मैडम आपके उधर पंखे चलने वाले, गर्मी होती है मैडम?
0: जी हाँ, बहुत गर्मी होती है यहाँ भी।
6: अच्छा।
0: जी तो बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
6: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा जिगर।
0: जी,
6: गाने के बोल, मैंने खत महबूब के नाम लिखा।
0: जी, तो ये गीत सुनकर सबसे पहले आप किन्हें याद करते हैं?
6: जी मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको।
0: जी,
6: राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अविनाश जी है, पूर्णिमा मैडम है, पुरुषोत्तम भैया जी है।
0: जी,
6: और जितने कॉलर सुन रहे हैं और आप ही ज्यादा देते हैं, तो मैं छोटी सी अपनी बात रख सकता हूँ?
0: जी बताइए।
6: जी मैडम, देखो पहले आपका आकाशवाणी विजयपुरम में क्या है कि जब घंटी जाती थी ना मैडम, तो उसमें क्या है कि कॉल उठता था, और अब क्या है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी,
6: तो अभी इस टाइम क्या है कि खाली घंटी जा रही है, तो वो पता नहीं पड़ता कि नंबर पे कौन सा पे उठा है कौन सा नहीं उठा है। पहले ऐसा होता था कि घंटी खाली नहीं जाती थी, और अब पहले ये भी नहीं बोलता था टूट टूट, अभी बीच में टूट टूट बोलता था, कोई कॉलर अपना नाम लेते ना तो समझ नहीं आता मैडम।
0: जी जी जी,
6: मैं ये वो अधिकारी अगर मेरी बात सुन रहे तो थोड़ा इसको।
0: जी जी जी, आप इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। तो बताइए पूरन वर्मा जी, कि आपके शहर में भी इस समय बारिश का बेसब्री से इंतजार चल रहा है?
6: जी मैडम, बारिश का अभी तो मौसम में हो जाए, पर इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक डेढ़ महीने बाद में फसल भी उगाएंगे मैडम, अभी बारिश हो जाएगी ना, खेत गीला हो जाएगा।
0: जी जी जी जी, उम्मीद है बहुत जल्द आपके शहर में भी बारिश दस्तक दे और मौसम सुहाना हो जाए।
6: जी,
0: तो चलिए सुनते हैं अब आपकी पसंद का ये गीत।
6: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: भाई
1: जी,
0: हेलो हेलो
1: हमारी
0: जी,
1: बात किनसे हो रही है?
0: मैं प्रेमजीत चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम सिवनी डिस्ट्रिक्ट से।
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत
0: आपको
1: सुनवाएं
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: आपको?
0: धन्यवाद। पहले आपको मैं आपको और अभी प्रोग्राम सुनने वाला सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार प्रेमजीत जी, सबसे पहले गाना बता दीजिए।
0: आज तो मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जुदाई।
1: जी,
0: गाने का
1: जुदा
0: बोल ऐसे है, मैं तुझसे ऐसे मिलूं।
1: जी, तो सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत। आज रविवार है तो क्या कर रहे हैं आप छुट्टियों वाले
0: तो
1: दिन?
0: आज
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: घर में बैठ रहा हूँ, अभी तो घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ।
1: जी, तो आप रेडियो कब कब सुनते हैं?
0: को प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और हमारा आसाम में बारिश हो रहा है,
1: जी,
0: बारिश हो रहा है। काल रात पूरा रात में बारिश हुआ।
1: तो गर्मियों के बाद थोड़ा सुकून है अभी।
0: यस, और
1: जी
0: मैं दो चार मित्रों को नाम देना चाहता हूँ,
1: जी जरूर।
0: मैं तो आप सुनिए, और अनुपमा बत्रा जी, और जौहर जी, और आशुतोष दुमना जी, अविनाश जी, संगीता जी, सुपा भट्टाचार्य जी, और मिथुन चक्रवर्ती बेंगलुरु से, और सप्तमी विष्णु कुंडू जी, और दिल्ली से एक बहुत अच्छा दोस्त है धर्मवीर प्रजापति जी, और अभी प्रोग्राम सुनने वाला खड़े सुतों को लेकर सुनेंगे, और पूरा से बोर्ड से सुन लेंगे। ठीक है
1: जी
0: मैडम, आप
1: जी
0: कॉल
1: सुनवा रहे हैं
0: आपको
1: आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी। जय श्री महाकाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए, हमारी बात किन से हो रही है?
1: मैम शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका शिवा जी। बताइए, कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको? आज इस कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं आप, तो जल्दी से गाना
1: जी
0: बता दीजिए।
1: मैम, मूवी का नाम है मैम मन,
0: जी, मन फिल्म का कौन सा
1: और
0: गीत
1: गाने
0: सुनवाएं?
1: गाने के बोल है मैम और गम से है। जी, हमारे मित्र रहेंगे राजस्थान से पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अभिमा जी, भगवान सिंह परमार जी और तमाम सुनने वाले।
0: जी, आप अपने सभी मित्रों के साथ आनंद लीजिए फिल्म मन का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

श्रोताओं, कभी अपनों से दो बातें कर लीजिए, कभी खुलकर मुस्कुरा लीजिए और कभी अपने मनपसंद गीतों के साथ कुछ पल बिता लीजिए। यकीन मानिए, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिल को सुकून देने वाला सबसे प्यारा साथी है। जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि हम हर दिन कुछ अच्छा सुने, अच्छा सोचे और अच्छा महसूस करें। दोस्तों, बातों और गीतों से सजी आज की ये महफिल अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है हेलो फरमाइश का आज का ये साथ आपके दिन को खुशनुमा बना गया होगा। याद रखिए, अच्छे विचार और मधुर संगीत मन को हमेशा नई ऊर्जा देते हैं। अब दीजिए श्री विद्या को इस कार्यक्रम से इजाजत। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी बातों और कुछ गीतों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11:02 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: जंक्शन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम से मैं शिबानी,
2: मैं दीपिका,
3: मैं मीनू
4: और मैं सुमित।
1: आज के जनता जंक्शन कार्यक्रम को लेकर आप पहुंचे हैं मरीना पार्क में। ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि शहर की रौनक और लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है। समंदर की उठती लहरें, ठंडी ठंडी चलती हवाएं और आसपास का खूबसूरत नज़ारा इस जगह को और भी खास बना रहा है। कोई यहाँ सुकून के पल बिताने आया है तो कोई नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है। श्रोताओं, आज का जनता जंक्शन कार्यक्रम इंटरनेशनल ब्रदर्स डे के इस खास मौके को समर्पित है। हर साल 24 मई को मनाया जाने वाला यह दिन भाई के प्यार, साथ और खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। फनी स्टोरीज, इमोशनल मेमोरीज और फुल ऑन सिबलिंग मस्ती के साथ चलिए इसी खास अवसर पर यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं उनके दिल की बातें।

0: मैं देख पा रही हूँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारे श्रोता से। हेलो जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम मालती मंडल है
0: जी। यहाँ पर हर समय इतनी चहल पहल रहती है, आपके हिसाब से लोग यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय करने आते हैं?
1: यहाँ सुबह शाम जॉगिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, और यहाँ का जो शाम को जो फूड स्टॉल है उसका आनंद लेने भी आते हैं, इसीलिए ये जगह काफ़ी पसंद करते हैं सारे लोग।
0: आज 24 मई को हम इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मना रहे हैं। इस खास मौके पर आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं अपने भाई को दिल से यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा खुश रहे और अपने परिवार के साथ मिले रहे और जीवन में बहुत तरक्की करे। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे भाई को कि मुश्किल समय में ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं।
0: अगर आप अपने भाई को एक शब्द में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा?
1: एक शब्द में ये डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल बात है, फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हर मुश्किल समय में वो मेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं।
0: चलिए, आपका ये खूबसूरत रिश्ता यूं ही हमेशा ऐसे ही बना रहे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: हेलो मैडम, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अनुष्का सिंह है
0: जी। आप कहाँ रहती है मैडम?
1: मैं चिकनगांव पुलिस क्वार्टर से हूँ
0: जी। आज ब्रदर्स

0: रिश्ते हैं, आपके लिए भाई का रिश्ता कितना खास है?
1: मेरे लिए मेरा भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है मेरे लाइफ में जो कोई वो प्लेस ले ही नहीं सकता मेरी लाइफ में।
0: जी बहुत अच्छा। क्या आपका भाई आपका सबसे अच्छा दोस्त है क्या?
1: जी मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी लाइफ में मेरा भाई है।
0: आपको अपने भाई की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है?
1: मेरे को मेरे भाई की सबसे अच्छी आदत यही लगती है कि मैं बाहर पढ़ाई करती हूँ, मैं एक साल बाद घर आती हूँ तो उसका जो प्यार होता है ना मेरे टूवर्ड्स में बहुत ज़्यादा होता है। एक साल बाद घर आओ फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है वो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपका बात सुनकर। अगर आपको अपने भाई के लिए एक शब्द कहना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: आई लव यू भाई, आप तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता, आई लव यू सो मच।
0: बहुत अच्छा लगा आपका बात सुनकर। अगर आपका भाई अभी रेडियो सुन रहा हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई तेरा जगह कोई नहीं ले सकता, तू जो है मेरी लाइफ में वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, आफ्टर मेरे मम्मी पापा के बाद तू ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लव यू।
0: आपका बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने भाई को आप कुछ गाना सुनाना चाहेंगे क्या?
1: हाँ, उसके लिए मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी, तू जो मिला

0: हेलो सर।
1: हेलो
0: सर, आपका नाम बताइए।
1: ऋषिपाल।
0: ऋषि जी, अभी ब्रदर डे तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशली आप अपने भाई के बारे में।

0: मेरा मतलब अपना तो कोई भाई नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं वही, उन्हीं को मैं भाई बोलता हूँ। बचपन से जो स्कूल में साथ में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो मिले, तो भाई जैसा ही रिलेशन है हमारा।
1: लोग कब मिले थे, कैसे मिले थे, और वो आपके लिए क्यों खास है, और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
0: खास ऐसा कोई खास बात नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ ये रीज़न है, इसकी वजह से खास है। बचपन से पढ़ रहे हैं साथ में, अभी तक साथ में हैं, आज भी कांटेक्ट में हैं, बस उतना ही रीज़न काफ़ी है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बिना रीज़न के आपके दोस्त हैं, हर वक्त आपका साथ देते हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आप अपने भाइयों को, अभी मान लीजिए महंगाई भी आ रही है, तो ऐसे में आप अपने दोस्तों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि खर्च कैसे करें, बेवजह ना करें, तो उसके बारे में उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे?
0: सजेशन इन चीज़ों को लेके भी ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सब अपने हिसाब से ही खर्च करते हैं। बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कहाँ कैसे खर्च करना है, कैसे पैसे बचाना है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप अपने दोस्तों के लिए कोई एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे रेडियो पर?
0: ट्यूबलाइट मूवी का गाना है, खैर मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करूँगा।
1: चलिए ऋषि जी, आपने बहुत प्यारा गाना चुना है।

0: पहले अपना नाम बताइए।
1: इवेंजेलिना जेम्स।
0: तो इवेंजेलिना जी, जैसा कि आपको पता है आज 24 मई है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मनाया जाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है?
1: जी, मेरा और मेरा ब्रदर्स का साथ मेरा जो रिश्ता है बहुत अच्छा है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से हम लोग, बट कभी कभी वो अनोइंग बन जाता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका हरकत। उसका बैड हैबिट रहता है कि कभी कभी हम लोग छोटे छोटे चीज़ में लड़ देते हैं, जैसे खाने का चीज़ या फिर कुछ कपड़े हो या सामान हो या फिर हमको छोड़ने या लेने आने का, वो सब कभी कभी वो बाद में छेड़ देता हम लोग एक दूसरे को, छेड़ जाते हैं तो दोनों को, मार भी देते दोनों एक दूसरे को, बट दोस्त बन जाते हैं थोड़ी देर बाद।
0: तो जैसे कि होता ही है, बहन भाई का रिश्ता तो है ही नोकझोंक भरा, तो आपका भाई मतलब ऐसी कोई बचपन की ऐसी कोई लड़ाई अभी बहुत बड़ी हुई हो जैसा कुछ अब कुछ याद आ रहा हो पहले?
1: जी, बीच में तो कुछ था बट इतना कुछ नहीं था, लड़ाई हुई बट फ्रेंडशिप भी हो गया जल्दी हम लोग दोनों का। वो मुझे अभी भी है, वो निकोबार चले गया तो अभी तो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं है, मिस कर रही हूँ क्योंकि मैंने लड़ाई किया जस्ट रिसेंटली, मैंने उससे लड़ी क्योंकि वो मेरे को लेने नहीं आया जट्टी से, इसलिए लड़ लिया उससे।
0: आपका आपके भाई के साथ काफी खट्टा मीठा तरीके का रिश्ता है?
1: बहुत प्यार करता है, बड़ा भाई है ना इसलिए प्यार करता है।
0: तो चलिए इवेंजेलिना जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू मैम।
0: तो इवेंजेलिना, आप आज के दिन अपने भाई को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: मेरे भाई तू मेरी जान है।
0: तो आपकी आवाज जैसा कि हम सुन रहे हैं बहुत प्यारी है, तो क्या दो शब्द आप गुनगुनाना चाहेंगी?
1: जी,

तो आज पता चल गया हर भाई थोड़ा इरिटेटिंग होता है, लेकिन बिना उनके लाइफ भी बोरिंग होती है। फाइट्स अलग हो सकती हैं, चॉइसेस अलग हो सकती हैं, लेकिन भाइयों का कनेक्शन हमेशा स्पेशल होता है। श्रोताओं, अपने भाइयों को हमेशा प्यार दीजिए और थोड़ा तंग भी कीजिए, क्योंकि वही तो असली सिबलिंग बॉन्डिंग है। उम्मीद है आपको आज का ये सफर और बातचीत पसंद आई होगी। आपने भी इस खास दिन को हमारे साथ खूब एंजॉय किया होगा। तो मैं दीपिका अपने साथियों के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। अब मुलाकात होगी जनता जंक्शन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

미션. श्रोताओं, अभी आप स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग रहा सुमित, दीपिका, शिबानी और मीनू का, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

श्रोताओं, दिन की हल्की हल्की रोशनी में कुछ मीठे अल्फाज और सुरीले एहसास लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच। नमस्कार श्रोताओं, इस समय घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 11:32। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गजल। आज की इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत होगी सबसे पहले रूना लैला की आवाज से। इसके ठीक बाद कार्यक्रम में शामिल होंगी पिनाज मसानी और चंदन दास की दिल छू लेने वाली गजलें। आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

श्रोताओं, अभी आप चंदन दास की आवाज में एक गजल सुन रहे थे। आज के कलाकार थे रूना लैला, पिनास मसानी और चंदन दास। और इसी के साथ ही कार्यक्रम गजल अब यहीं समाप्त होता है।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: Bhagavan Savitri.
1: Pasha.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान

0: भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों टीबी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हीमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jaishankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the U.S. are strategically aligned on key issues.

सुगम संगीत के तहत आज के फनकार थे मेहती हसन और अनुराधा पौडवाल। और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर संसार।

बहनों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को कभी क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, इसे केवल प्रेम और क्षमा से ही जीता जा सकता है। नमस्कार प्यारी बहनों, इस सुविचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर संसार में, जहां आपके सफर में साथी रहूंगी मैं, यानी कि आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा। तो चलिए, इस विचार के भाव को तो आप जान ही गई होंगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों चलिए आइए सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों में डायरिया हो जाता है, लेकिन उसका क्या बचाव है और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में अक्सर हम समझ नहीं पाते। तो चलिए इस बारे में आज आपको सुनाते हैं डॉक्टर रितु सिंह से हमारी हुई बातचीत। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रितु सिंह। नमस्कार डॉक्टर।
1: नमस्कार मैडम।
0: आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ खास जानकारियाँ हम डायरिया से रिलेटेड आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि डायरिया क्या है और ये कितने तरह का होता है।
1: देखिए, डायरिया एक कंडीशन है जिसमें बच्चा जो नॉर्मली दिन में, हर बच्चे का अपना अलग स्टूल पैटर्न होता है। कोई बच्चा दिन में एक बार, कोई दो बार, कोई तीन बार, तो बच्चों में बहुत सारा वेरिएशन होता है, कोई फिक्स नंबर्स नहीं होता है। बट अगर किसी भी बच्चे में उसका जो पैटर्न था, मान लीजिए वो दिन में कोई बच्चा दो बार मोशन करता है, लेकिन उससे अगर वो अचानक फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, ज़्यादा बार होने लगे, या कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, यानी कि जैसे पहले कंसिस्टेंसी नॉर्मल जो रहती है सॉलिड, उसके हिसाब से अगर मोशन पतला जाने लगे, तो ये चेंजेस अगर आए तो उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। और जो आप टाइप्स बोल रहे हो, ज़्यादातर जो बच्चों में देखा गया है उसको हम लोग अक्यूट डायरिया बोलते हैं। अक्यूट का मतलब है कि अचानक बच्चे को, कल तक का बच्चा सही था, अचानक से उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए और हमारे पास बच्चे आते हैं, तो उसको ये कॉमन बच्चों में होता है एंड

0: ये कॉमन टाइप है जो हम देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है कि किसी किसी बच्चे में एक बार डायरिया स्टार्ट हुआ वो चलता ही जाता है, अचानक स्टार्ट हुआ लेकिन एक हफ्ते गुजर गए। यूजुअली नॉर्मल जो डायरिया होता है बच्चों में एक हफ्ते में सुधर जाना चाहिए, बट किसी किसी बच्चे में है कि डायरिया चलता रहता है, दो हफ्ते से ज़्यादा हो जाए। तो ये कंडीशन है जिसमें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी बच्चे में अगर दो हफ्ते तक भी सुधार ना आए तो तुरंत डॉक्टर के पास लाएँ, क्योंकि ये जो पर्सिस्टेंट डायरिया होता है इसमें हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट करना होता है। और एक तीसरी टाइप जो मैं बता रही हूँ वह है क्रॉनिक डायरिया, जिसमें कि अचानक नहीं, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, थोड़ा लूज होना शुरू होता है, लेकिन ये भी जो है दो हफ्ते गुजर जाते हैं और सुधार नहीं होता है। अच्छा। तो ज़्यादातर जो आपको याद रखना है कि हफ्ते भर में अगर डायरिया नहीं सुधर रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर डायरिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चे में?
0: देखिए बच्चों में तो मोस्टली जो डायरिया होते हैं वो इन्फेक्शन के वजह से होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो इन्फेक्शंस हैं मोस्टली वायरल होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वायरल है करके हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि वायरल तो जैसे सर्दी जुकाम होता है वैसे डायरिया है, तो डायरिया वायरल है तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके लिए कोई अलग सी दवाइयाँ नहीं चाहिए, बस हमें उस दौरान बच्चे को केयर करना है और ये अपने से ठीक हो जाता है।
1: तो इसमें मेडिकेशंस वगैरह भी चलती होंगी?
0: मेडिकेशंस अलग से वायरस के लिए कुछ नहीं देना है, इसमें मैं आपसे जो डिस्कस करूँगी वो मेनली जो हमें देना है वो है ORS, जो हम लोग विज्ञापन देखते हैं टीवी में, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, यही इलाज है। वैसे ये मैटर नहीं करता है कि वायरस से है बैक्टीरिया से है, किसी भी लूज मोशन में पहला काम जिस जो हर मदर को करना चाहिए वो है ORS पिलाएं, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, या आप किसी भी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में जाते हो तो आपको ORS का पैकेट तो ऐसे ही मिल जाता है। तो ORS ही सब चीज़ का सोल्यूशन है, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल।
1: ORS इतना ज़रूरी क्यों है?
0: देखिए जो डायरिया होती है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि लूज मोशन हो रहा है, तो बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम होती है कि इसके वजह से शरीर से पानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम ये सब चीज़ें भी स्टूल के साथ चली जाती हैं, तो बच्चे को इसको रिप्लेनिश करना है, नहीं तो उसके बॉडी में कमियाँ आने लगेगी, और यही जो है सबसे बड़ी वजह है जबकि डायरिया में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए मदर्स को एक ही काम करना है कि जैसे ही लूज मोशन स्टार्ट होता है आप तुरंत डायरिया का जो मेन है ORS वो ले आएँ और उसको पिलाना चालू कर दें, भले ही बच्चा कितनी भी बार मोशन करे, अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो कम से कम 100 से 200 ml सिर्फ ORS पिलाते जाना, बेसिकली जो लॉस निकल रहा है उसको आप साथ साथ में रिप्लेस करिए, बिकॉज ये वायरल है तो आप इसको रोक तो सकते नहीं हो
1: जी,
0: ये 3-4 दिन रहेगा, बट इस दौरान पानी की कमी ना हो इसके लिए आपको ORS देना।
1: तो जैसे आपने कहा कि एक तरह का वायरल है, तो जैसे ये इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ लूज मोशन ही उसके अंदर एक सिम्टम है या कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं?
0: शुरुआत में कुछ बच्चों में हल्का बुखार हो सकता है, साथ में सर्दी जुकाम या बॉडी में दर्द होना जिसे कहते हैं जनरलाइज माइल्जिया, तो ये चीज़ें भी साथ में हो सकती हैं, कभी कभी किसी को उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो ये सब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट हो सकता है। तो जो बाकी सिम्टम्स हैं बुखार के लिए पैरासिटामोल टाइम टू टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो लूज मोशन के लिए एक ही इलाज है जो है वो ORS।
1: तो क्या बच्चों में और बड़ों में भी सेम ही जो लक्षण है कि अलग होते हैं?
0: देखिए लक्षण तो देखिए लूज मोशन एडल्ट्स में भी हम देखते हैं सेम चीज़ें, बट बच्चों में इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बच्चे बड़ों की तरह नहीं है। अब आप जैसे मैंने बोला बच्चे को अगर बॉडी से पानी जा रहा है तो स्पेशली अगर बच्चा 2 साल से कम का है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि मुझे प्यास लग रही है मुझे पानी दो। यूजुअली ये होता है कि अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं तो वो समझ नहीं पा रहे कि बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है 1 साल का तो वो खुद से चल के जाके पानी कहाँ है लेके खुद से पीना वो रिप्लेनिश नहीं कर पाता है, और बच्चों का जो बॉडी सरफेस एरिया भी उस हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट है, तो पानी क्योंकि अगर जब बॉडी से निकलता है तो उनमें लॉसेस जल्दी हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक तो वो रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो डिपेंड कर रहे हैं एडल्ट्स के ऊपर कि माँ लाएगी तो पानी देगी, वो खुद से बता नहीं पा रहे हैं, और इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी होते हैं। तो इन सब के चलते डायरिया होता तो दोनों में ही है, लेकिन छोटा बच्चा जिसमें अगर मान लीजिए उसने 8-10 बार धड़ाधड़ उसने लूज मोशन कर दिया, उसके बॉडी में पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: अगर वो रिप्लेनिश नहीं हुआ और 6 से 8 घंटे में बच्चे का सिचुएशन काफ़ी बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने कहा ना कि माँ को ये ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा मोशन कर रहा है आप उसी वक्त ORS उसको रिप्लेस करिए, ताकि वो नौबत ना आए कि बच्चा एकदम ही सुस्त हो जाए मुँह से लेना ही बंद कर दें, फिर उस केस में हमें IV वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो जो सिवियर वाला सिचुएशन है उसको आप इजीली मदर्स ही प्रिवेंट कर सकती हैं, अगर 2 साल से कम है एटलीस्ट आप ब्रेस्ट

0: फीड कराई, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के थ्रू माँ के दूध से बच्चे का जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो भी रिप्लेनिश हो रहा है। तो अगर बच्चा कितना भी बीमार हो, कुछ खाए ना खाए, माँ का दूध तो वो पी लेता है बीमारी के सिचुएशन में भी। तो माँ का दूध कंटिन्यू करिए, स्पेशली बिलो 2 ईयर्स में, और ORS अगर बड़ा बच्चा है।
1: इसके अलावा जैसे आपने बोला ORS दें मेडिकेशन से, तो खान पान का और क्या ख्याल रखना चाहिए?
0: खान पान में तो जैसे लोगों में मैंने देखा है, आम धारणा ये है कि बच्चे को लूज मोशन है, पहला काम है खाना बंद कर दो, लूज मोशन बंद हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो बच्चे का जो, अगर आप पहली बात है कि इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे की भूख कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है, आप जो खिलाओगे भी, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बच्चे में एक इन्फेक्शन चल रहा है, तो बॉडी को इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो ऑल्दो एपेटाइट आपकी कम हो गई है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपको उस वायरस से लड़ना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी हर मदर को कि ये मत सोचिए कि फास्टिंग करा दिया तो ये अपने आप सब्साइड हो जाएगा। इस दौरान बच्चे को डाइट देनी है, और थोड़ा थोड़ा देना है, एक बार में बच्चे को भूख नहीं है वो नहीं खाएगा।

0: पैन में तो जैसे लोगों में मैंने देखा है आम धारणा ये है कि बच्चे को लूज मोशन है, पहला काम है खाना बंद कर दो, लूज मोशन बंद हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ये एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो बच्चे का जो, अगर आप पहली बात है कि इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे की भूख कम हो जाती है, दूसरी चीज़ है आप जो खिलाओगे भी, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बच्चे में एक इन्फेक्शन चल रहा है तो बॉडी को इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो ऑल दो एपेटाइट आपकी कम हो गई है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि आपको उस वायरस से लड़ना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी हर मदर को कि ये मत सोचिए कि फास्टिंग करा दिया तो ये अपने आप सब्साइड हो जाएगा। इस दौरान बच्चे को डाइट देनी है और थोड़ा थोड़ा देना है, एक बार में बच्चे को भूख नहीं है वो नहीं खाएगा। आप छोटा छोटा फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खिलाइए, जो उसको मन है खिलाइए। अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो ब्रेस्ट फीड कराइए, या फिर उसको जैसे थोड़ा सा भी पसंद है, घर का जो भी खाना आप पहले दे रहे थे उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, जो वो लेगा उसको देते रहिए। एक बार ऑफर करिए, अगर थोड़ा 2 स्पून भी खा रहा है 2 घंटे बाद दोबारा आप ट्राई करिए, लेकिन बंद नहीं करना है।
1: बंद नहीं
0: मतलब
1: करना
0: ये पाया गया है रिसर्च में कि आप अगर थोड़ा थोड़ा भी खिलाते हो, वो जो थोड़ा खाना भी जो इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो जल्दी रिकवरी में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए खाली पेट बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा फीड फीड्स जरूर दें,
1: तो खाना भी हल्का ही देना
0: हल्का
1: चाहिए।
0: दें, लेकिन डाइल्यूट नहीं करना है कि जैसे कहते हैं ना लोग बिल्कुल पानी मिला हुआ दूध या पानी वाला दाल, एकदम वैसे नहीं, नॉर्मल दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें वैसे मत दीजिए, नॉर्मल जैसे कि घर में बच्चा दाल चावल खा रहा है, हाँ दे सकते हैं। तो नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं, लेकिन नॉर्मल जैसे रोज़मर्रा जो खाते हैं, जिसमें थोड़ा सा दाल हो, चावल हो या रोटी जो भी खा रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत सब्जी, फ्रूट्स थोड़े बहुत, कोई भी चीज़ एक्सेस ना हो, ज़्यादा फाइबर भी ना हो और बिल्कुल फाइबर के बिना ना हो, इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, और वो कंटिन्यू करना है।
1: इसके अलावा जैसे अगर डायरिया आपका ठीक हो गया है, बच्चे का मेडिकेशन हो गया, उसके बाद भी क्या खान पान का हमें खास ख्याल रखना होता है?
0: बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बच्चे की भूख कम थी, एब्जॉर्प्शन कम था, तो बॉडी से लॉसेस हुई हैं, तो उस दौरान तो बच्चे की एपेटाइट कम थी, उसने कम लिया है, लेकिन जैसे ही बच्चा रिकवर होता है तो ये पाया गया है कि बच्चों में ऑटोमेटिकली ये मैकेनिज्म होता है कि उनकी, जैसे कि एक बच्चा एक दिन में 4 बार खा रहा है, छोटा बच्चा 1 साल का, तो ऑटोमेटिकली आपको देखना है कि आपको डायरिया के रिकवरी के बाद एक फीड एक्स्ट्रा देना है उसको। जैसे कि बच्चा पहले दिन में 3 बार ले रहा था, उसको एक एक्स्ट्रा फीड दीजिए फॉर नेक्स्ट 14 डेज, ताकि जो इस डायरिया के दौरान 1 हफ्ते में जो उसकी कैलोरीज लॉस हुई हैं, जो बॉडी से लॉसेस हुई हैं, उसको वो बच्चा ग्रेजुअली नेक्स्ट 14 डेज में पिकअप कर लेगा। तो आप एक एक्स्ट्रा फीड आप इंश्योर करें,
1: लेकिन जितना हो सके कि अच्छा खाना,
0: अच्छा बिल्कुल
1: बैलेंस
0: डाइट,
1: बैलेंस डाइट
0: बिल्कुल। आजकल जो फास्ट फूड और वो सब चीज़ें बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, शुड बी होम मेड फूड।
1: तो ORS भी साथ में देते रहना चाहिए कि उसका कोई
0: ORS? तो देखिए ORS तो हम तभी देंगे जब जितने दौरान लूज मोशन चल रहा है।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने बोला ना हर बार बच्चा मोशन करके आता है तो आपको अराउंड 2 साल तक का बच्चा है तो अराउंड 50-200 ml हर मोशन पास करके आने के बाद, तो अगर 3-4 दिन के बाद जब लूज मोशन कम हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसके बाद अगर जब मोशन नॉर्मल हो जाता है तो ORS कंटिन्यू नहीं करना है। ऑफकोर्स हर बच्चे को जब डायरिया स्टार्ट होता है तो एक जिंक सिरप है जो हम स्टार्ट करते हैं, 5 ml दिन में एक बार देते हैं, तो वो एक मेडिकेशन है जो कि डायरिया के वक्त स्टार्ट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन डायरिया कंप्लीट होने के बाद भी आपको वो टोटल 14 दिन का कोर्स कंप्लीट करना है।
1: अच्छा,
0: तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप वो जिंक दो जो दे रहे हो, भले ही आपका डायरिया बंद हो गया हो, लेकिन आप उसे 14 दिन तक लगातार देते रहें, क्योंकि उसका एडवांटेज ये होता है कि वो बच्चे को फ्यूचर कोई एपिसोड ऑफ डायरिया से भी प्रोटेक्शन देता है।
1: अच्छा,
0: तो बॉडी में एक तरह से रिजर्व हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी उस बच्चे को डायरिया नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देता है,
1: प्रोटेक्शन दे देता है
0: तो एक तरह से। तो जिंक मैं चाहूँगी कि हर मदर जो बस स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स जब डायरिया के दौरान, तो वो आप पूरा 14 दिन का कोर्स कंप्लीट करिए ताकि आगे के लिए कुछ प्रोटेक्शन रहे।
1: ओके, तो डॉक्टर अभी आपने हमें ORS के बारे में बताया, आपने हमें जिंक के बारे में बताया, खान पान के बारे में बताया, तो जैसे आज का माहौल चेंज हो रहा है, हमारा वातावरण बदल रहा है, खान पान का तरीका बदल रहा है, बच्चों का दिनचर्या बदल रही है, तो ऐसे में कुछ खास बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए क्या?
0: बिल्कुल, हम जब आजकल जब भी OPD में बैठते हैं तो मदर्स हमारे पास कॉमन आती हैं कुछ इश्यूज़ लेके, स्पेशली जो कोविड के बाद हमने नोटिस किया, कोविड के दौरान तो बच्चे एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, बच्चे सब घर में बंद गए थे, ऑप्शंस भी कम हो गए थे, चाहे वो आउटडोर गेम्स वगैरह, लेकिन अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। तो मैं चाहूँगी कि हर पेरेंट्स कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी में डेली बेसिस पे एंगेज करें, और उसके साथ

0: डाइट के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगी कि आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि हर बच्चे को बेस्ट जो पॉसिबल है वो दें, तो एफर्ट हर पेरेंट लगाते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो चीज़ें जो है लोगों को मिसगाइड करने लगी हैं, लोग प्रोसेस फूड की तरफ इंक्लाइंड हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं तो थोड़ा मुश्किल भी रहता है। लेकिन मैं कहूँगी कि मदर के लिए शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इनिशिएटिव लें, होम मेड फूड पर एम्फसाइज करें, जो ये रेडीमेड चाहे वो प्रोसेस्ड आइटम्स जो आ रही हैं रेडी टू ईट, ये सब चीज़ों में देर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ जंक फूड जो होती हैं चिप्स वगैरह से बच्चे का लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हमारी ओपीडी में हम बैठते हैं तो देखते हैं ज़्यादातर बच्चों को डेली मोशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन हो गया है आजकल, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिम प्रोसेस फूड। जो ऑप्शन जो आपको ध्यान देनी है वो है कि बच्चे को डाइट बैलेंस देना है, सब्जियाँ देनी है, फ्रूट्स देनी है, बच्चे को टाइम से सुबह टॉयलेट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं टाइम पे एक मोशन के लिए बैठाएं, तो ये सब थोड़ा सा डिसिप्लिन है और साथ में डाइट, अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्ट चलती हैं तो बच्चे का ग्रोथ है, बच्चे की इम्यूनिटी परफेक्ट होती है। अगर आप प्रोसेस फूड या जंक फूड की तरफ जाते हैं तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार उनको पेट में दर्द, बिकॉज सुबह मोशन सही से नहीं हो रहा है तो दे आर ऑलवेज अनकम्फर्टेबल। तो हर मदर कोशिश करे कि जो भी घर में बन रहा है बच्चों को हैबिट डेवलप करें कि घर का खाना खाएं, डेली फ्रेश खाएं, और एक बैलेंस डाइट जिसमें कि सब्जियाँ हों, फ्रूट्स हों, ताकि बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीट हो।
1: तो डॉक्टर, आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगे डायरिया से जुड़ा
0: मैं यही कहना चाहूँगी कि डायरिया एक डिजीज़ है जो बच्चों में होता है और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर बच्चे को होना चाहिए, एक तरह से इम्यूनिटी बनती है, तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए ये प्रॉब्लम होगा, तो हर बच्चे को जैसे ही इस तरह का कुछ सिम्टम हो तो मदर को चाहिए पहला काम है ORS का पैकेट लें, उसको 1 लीटर पानी में बनाएं, और बच्चा जब भी मोशन करके आए उसे थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो। अगर आप ये स्टेप लेते हो और साथ में जो मैंने इसमें कहा जिंक, तो एक सिंपल ट्रीटमेंट है जिससे कि बच्चे के जो डायरिया रिलेटेड किसी भी कॉम्प्लिकेशन को आप अवॉइड कर सकते हो, और साथ में जैसे मैंने बोला फीडिंग कंटिन्यू करना है ताकि बच्चे में कमी ना आए बहुत ज़्यादा, और अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हो तो जैसे एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है अपने से सबसाइड हो जाएगा, और जैसे मैंने बोला डेली बेसिस पे अगर आप एक अच्छा डाइट बच्चे को प्रोवाइड करते हो तो बच्चे की इम्यूनिटी भी इंटैक्ट रहती है, तो आपका बच्चा हर तरह के इस तरह के छोटे मोटे डायरिया इन्फेक्शंस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सबसे लड़ने में उसकी क्षमता बेटर हो जाती है और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने इतना समय दिया हमें और हम महिलाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुझे उम्मीद है कि जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगी क्योंकि उनके हाथ में ही पूरे घर की सेहत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच।
2: बहनों, हमें आशा है कि डॉक्टर ऋतु सिंह से हुई हमारी भेंट वार्ता आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको बहुत सी बातें डायरिया के बारे में पता चली होंगी, है ना। बहनों, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, जिसे हर वर्ष 24 मई को क्वीन विक्टोरिया के जन्म दिवस के रूप में एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता था। हालांकि अब इसे हर साल मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह दिन उन 56 सदस्य देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। सप्ताह भर चलने वाला आयोजन ध्वजारोहण सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा देशों के बीच एकता, शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। 1958 में इस दिन का नाम एम्पायर डे से राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया था। विश्व भर में राष्ट्रमंडल दिवस अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इसे मार्च में, और भारत, ब्राज़ील जैसे देशों में अब इसे 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस सभी देशों के बीच एकता को स्थापित करने और मानवता को बढ़ावा देने का दिवस है। सभी देशों में स्वतंत्रता की भावना, न्याय और सहिष्णुता के आदर्शों के लिए भावना की एकता का प्रतीक है यह दिन। बहनों, चलिए थोड़ा आज खेलों के बारे में भी बात करते हैं। जहां पहले महिलाओं को कम देखा जाता था, लेकिन आज हर जगह उनका बोलबाला है। अब फुटबॉल को ही ले लीजिए, दुनिया भर में महिला फुटबॉल भी अब पुरुषों जितनी ही लोकप्रिय होती जा रही है, और भारतीय महिला फुटबॉल टीम भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रही है। खेलों में सालों से वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहनों, हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल

0: दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर फुटबॉल के खेल की वैश्विक पहुंच, कूटनीति, शांति और लोगों के एक साथ जोड़ने की क्षमता का सम्मान करने के लिए घोषित किया। ये दिन सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे जाकर लोगों को एकजुट करने और टीम वर्क, स्वस्थ जीवन शैली और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है बहनों, बल्कि दुनिया भर में शांति और विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। हाँ
1: आओ बैठो ना, वहाँ क्यों खड़े हो?
2: हुजूर, गुलामों को इतना मुंह नहीं लगाते हैं।
1: हम तुम्हें गुलाम नहीं अपना दोस्त समझते हैं।

तो बहनों चलिए, आज का हमारा घर संसार का ये अंक यही समाप्त होता है। हमें आशा है कि ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब अपनी सखी, अपनी दोस्त रीमा अरोड़ा को आज के अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Game for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirmed strength of strategic partnership in the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का

0: स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्यपालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक

0: परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्शी पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे।

0: ये पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म राज फिल्म से। आवाजें दी अलका याग्निक और अभिजीत ने, बोल समीर के हैं व धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

ये है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया। समीर की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

ये दिल आशिकाना। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए इस फिल्म का एक गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए चेहरा फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। दीपक सिंह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया नरेश शर्मा ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 3 बजे हैं और अब समय हो चुका है एल्बम टाइम का। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठक को।

0: Andaman Road Hoya City Rides. Now drive in style with our bold and powerful Toyota Hyryder. Smart hybrid technology, stunning looks, premium comfort and the highest mileage in its segment of up to 27.97 km per liter. All-in-one SUV. Exciting offer up to 1,80,000 and EMI start at just 7,777 per month. Visit Prince Toyota and win a short gifts on every test drive and call us at 0806-2358-621 today for exciting offers, exchange benefit and easy finance options. Toyota Hyryder, your stylish SUV for every journey. Prince Toyota, Garacharma and Diglipur. Let's move ahead with Toyota.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एल्बम टाइम। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज में ये एक एल्बम गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम एल्बम टाइम अब यहीं समाप्त होता है।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।
0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं, सफर में अगर गीत संगीत हो तो रास्ते खुद ब खुद खूबसूरत बन जाते हैं। कभी ठंडी हवाओं में कुछ नगमे गूंजते हैं तो कभी बारिश की बूंदें दिल की धड़कनों के साथ सुर मिला लेती हैं। श्रोताओं, यहाँ हर गीत जिंदगी के किसी खूबसूरत एहसास से जुड़ जाती है। आज की इस सुरीली महफिल में होंगे सफर के रंग, बारिश की खुशबू, ख्वाबों की उड़ान और दिल को छू लेने वाले कुछ खास नगमे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गीत से जो हर मुसाफिर के दिल में नई उमंग जगा देती है।

वाह क्या बात है, कभी कभी रास्ते मंजिल से ज्यादा यादगार बन जाते हैं, और जब साथ हो अपनी पसंद के गीत का तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की ओर जो कहता है, चलते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को खुलकर जीते रहो।

श्रोताओं, बारिश सिर्फ मौसम नहीं, कई बार वो दिल के अंदर छुपी खुशियों को भी बाहर ले आती है। अब महसूस कीजिए बारिश की वही आज़ाद और मस्ती की फुहार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामनिनी रोखर हमांग इंगिरे तगा लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनकातलुन ही इंगिलहराब मिनकातलुन ही दरन मिने महावत किरचोंग लामक होयने कुन पानाम ही

0: Technical Choirs and ngam Church of the Transfiguration iat kasih pemerintah hemini hangir het tenkeke. Hoye, hangadal nga haang in ngay sindang muhik in huray, hangro ngita kasata ita fan kanro tala harap ngayen.
1: Abhi aap Nikobari karikram sun rahe the. Ye Akashvani ka Shri Vijaypuram kendr hai. शाम के 4:30 में है अप्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। फलस्वरूप आप आसानी से कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और ना ही कोई खास तैयारी करनी होगी। लम्हे के इस प्रोग्राम में हम आपको मेडिटेशन क्या है, इसके कुछ आसान प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से आपको इसे करने के सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान ले। दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल है। इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अगर बड़े लोग नीचे नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, ताकि आप सही से सांस ले सके। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाए। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दे। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए

प्रेरित करें। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस ले और इसी प्रकार बाहर निकालें। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराएं। तीसरे चरण में अब अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपनी आत्मा या अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको सुख का अनुभव देता है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलित की अवस्था को बनाने की कोशिश करें कि मन को भटकने से बचाए। अगर मन किसी कारण भटक जाए तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, डे ड्रीमिंग यानी जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और कई प्रकार की अनुभूति होती है जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझिए कि ये केवल आपको विचलित करने वाला कारक है जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आए और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें इस बारे में जानने के बाद लम्हे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इनमें से कुछ खास के बारे में हम आपको बताने की प्रयास करेंगे इस लम्हे प्रोग्राम में। आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक ध्यान आपको मोह माया से अलग दुनिया को दिखाने में मदद करती है। इसके निरंतर उपयोग से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। इससे विचारों और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नई मानसिक ऊर्जा का आप में संचार होता है। दूसरा है दोस्तों, विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान का ये तरीका सबसे प्राचीन माना गया है। बताया जाता है कि ध्यान के इस तरीके को करीब 2500 साल पहले प्रचारित और प्रसारित किया है। मेडिटेशन का ये प्रकार आज व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भीतर झांककर खुद को समझने की कोशिश करता है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को विस्तार देने में समर्थ होता है। ज़ेन मेडिटेशन एक और तरीका है दोस्तों। मेडिटेशन का यह प्रकार चीनी बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। बता दें कि ध्यान का यह तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें दिमाग को एकाग्र करने पर खास ध्यान दिया जाता है। ध्यान की इस मुद्रा में आपको सुखासन मुद्रा में बैठकर और हाथों को आपस में मिलाते हुए बैठना होता है। ध्यान की इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह प्रकार आपको दिमागी रूप से विकसित और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। ये ध्यान आध्यात्मिक ध्यान का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बिंदु मानकर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतन मन के परे ले जाकर अपने अचेतन मन में झांकने के लिए प्रेरित करती है। इससे दुनिया को समझना और उसे अनुभव करने के नजरिए में बदलाव महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अब सुनिए दोस्तों राजयोग मेडिटेशन के बारे में। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन है। ध्यान का यह प्रकार आपको शांत रहने और खुद का निरीक्षण करने में मदद करता है। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता का भाव पनपता है। इस योग के खत्म बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। योग की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंखें खुली रखकर ध्यान लगा सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मेडिटेशन के इस प्रकार में मनुष्य अपने भीतर यानी अचेतन मन में झांकने का प्रयास करता है। यह आपको भौतिक बाधाओं जैसे दुख, सुख, खुशी और गम से दूर ले जाकर अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, जो आपको ये समझाने में मदद करता है कि भौतिक चीजों का दुनिया में कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों, कई प्रकार के योग और मेडिटेशन है, इसके बारे में तो हमने बात की।

0: अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है दोस्तों। तनाव में कमी, नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन से दिमागी विकास होता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 15वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पहले आज के शेष कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम। व्हाट्सएप पर आधारित महिलाओं के लिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगनी संध्या 6 बजे। शाम 6:30 पर सुनिए धरती के गीत कार्यक्रम में गुजराती लोकगीत। देशगान का समय रहेगा शाम 6:45। संध्या 7:15 पर आप सुन पाएंगे मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन आप सुन पाएंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सवेरे 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का विषय होगा बतख का भरण पोषण। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा खिलाड़ी शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सुबह 6:30। सवेरे 6:40 पर आप सुन पाएंगे समाचार वार्ता। वतन के गीत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 6:45 पर। सवेरे 6:50 पर बताया जाएगा मौसम की जानकारी तत्पश्चात कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। देशरागनी कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:15 जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम रेडियो रागिनी 90 वर्षों की कहानी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे पिनाज मसानी और मोहम्मद अजीज। सुबह 9 बजे आनंद दीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर आप परवीन सुल्ताना का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। सुबह 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा दिन में 11 बजे। 11:30 पर सुनिए एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार कुछ गीत। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे गाना लहरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में आप कुछ फिल्मी गाने सुन पाएंगे। समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा दोपहर 1:10 पर। दोपहर 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप लाइव ऑन आउट कार्यक्रम सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स, और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 4:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।
1: रबी

अभी आप उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया याराना फिल्म का गीत सुन रहे थे, और इस गीत को संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में विवाह फिल्म का ये गीत। गीत व संगीत है रविंद्र जैन का।

अब पेश है सोनू निगम के स्वर में झूठा ही सही फिल्म का ये गीत। अब्बास तैरेवाला के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: सोनू निगम के गाए झूठा ही सही फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम வானொலி வழங்கும் தமிழ் ரமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5:30 में हैं। आइए अब सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी। संगीत संगनी कार्यक्रम में सभी सखियों का स्वागत है और आज कार्यक्रम के साथ मैं तेरेसा। सखियों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं तो जल्दी से हमें गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। तो चलिए सखियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है इंग्लिशपुरा मध्य प्रदेश से सीजा, कविता और सपना ने। इन सखियों की पसंद पर ली

सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से रेखा, रेणु, आंचल और श्रीति ने फरमाइश की है जुनून फिल्म के इस गीत के लिए। तो आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सुभाष ग्राम डिगलीपुर से बीतिका मलाकार और इंदु सरकार की पसंद पर अब सुनवा रहे हैं सपने साजन के फिल्म का ये गीत।

अगली फरमाइश भेजी है मलाका गांव का निकोबार से रोसलिन, क्लियरेंस और तमारिस ने। इन सखियों की पसंद पर लीजिए अब सुनिए तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत।

0: स्कूल लाइन श्री विजयपुरम से रोशनी, ईशा, अनीशा, बिंदु और मोनिका ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है दिलवाले फिल्म के इस गीत के लिए। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: अरे चल शंकर बिहारी के साथ बगीचे में खाना खाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
1: बेबी कम ऑन, शंकर बिहारी के साथ।
3: अबे ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
4: आई लव सपना। आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
3: आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना, सपना।

सखियों, चलने से पहले एक बार फिर हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें ताकि आप हमें अपनी फरमाइशें भेज सकें। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। अब संगीत संगनी कार्यक्रम से आपकी सखी तेरेसा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए धरती के गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुजराती लोकगीत। तो लीजिए सुनिए दिवाली बैन भील की आवाज़ में ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत गुजराती लोकगीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 7:30 पर युवाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर।

दोपहर 2:30 पर FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार वितरण का राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजक कार्यक्रम कृत्रिम गर्भधान हर किसान की नई उड़ान, जिसके अंतर्गत विषय होगा लिंग के आधार पर वर्गीकृत वीर्य और कृत्रिम गर्भधान। विशेषज्ञ होंगे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागनाथ थोजने।

0: शाम 6:30 पर सुनिए पॉप मसाला कार्यक्रम। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से इस ब्रेक के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी गई,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्देश दिया। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय द्वारा मई तथा जून माह के लिए दो चरणों में ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा और कला एवं संस्कृति विभाग और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से जून में एक महीने की रंगमंच कार्यशाला का आयोजन करेगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेट्टा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी

को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित का एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकारिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल गठित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IIT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव और रंगमंच कार्यशाला का आयोजन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय द्वारा 26 से 30 मई तथा 9 जून से 12 जून तक दो चरणों में ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। यह आयोजन विशेष रूप से 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों अर्थात कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन की आदत विकसित करना, कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा साहित्यिक एवं रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव में कहानी वाचन, चित्रकला, पुस्तक खोज प्रतियोगिता, वर्तनी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी तथा कविता प्रतियोगिता जैसी अनेक रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम बच्चों को रचनात्मक विकसित करने, संप्रेक्षण कौशल सुधारने तथा मनोरंजक शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। इच्छुक प्रतिभागी राज्य पुस्तकालय में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7501496353 पर संपर्क किया जा सकता है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वीपों के युवाओं और आम जनता के बीच थिएटर को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के तहत जून माह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के सहयोग से एक महीने तक चलने वाली थिएटर कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य रचनात्मकता को प्रेरित करना, अनुशासन की भावना जगाना और प्रदर्शन कलाओं के प्रति सराहना विकसित करना है, जिससे द्वीपों की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो सके। इस संबंध में द्वीपों के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यशाला में केवल 30 व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा और चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी सेल्यूलर जेल परिसर स्थित कला एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त की जा सकती है। उद्योग निदेशालय की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए

एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सिलाई और वस्त्र निर्माण, बेत और बांस हस्तशिल्प, बड़ी गिरी और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। डिगलीपुर केंद्र सिलाई और वस्त्र निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और बड़ी गिरी में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। लिटिल अंडमान में सामान्य इंजीनियरिंग और बड़ी गिरी में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई और वस्त्र निर्माण, बड़ी गिरी जूट और जूट उत्पाद तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो तथा द्वीप समूह का स्थानीय प्रमाण पत्र धारक हो, वे इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को ₹1,000 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित उद्योग संवर्धन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजक पत्रिक और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार 28 मई की मध्य रात्रि तक की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित भत्ता और दिव्यांगता भत्ते के उन सभी पेंशन लाभार्थियों से कहा है कि जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वे 30 जून तक संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दे। ऐसा न करने पर उनकी वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है। श्री विजयपुरम में 8 जून से सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज और माननीय न्यायाधीश रितो ब्रतो कुमार मित्रा मामलों की सुनवाई करेंगे। अतुल स्मृति समिति द्वारा कल क्लब का 80वां स्थापना दिवस तथा कवि काजी नजरुल इस्लाम की 126वीं जयंती मनाई जाएगी। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6:30 पर श्री विजयपुरम स्थित क्लब परिसर में आयोजित होगा। समिति की महासचिव सुप्रिया मंडल ने बताया कि समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्देश दिया। शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय द्वारा मई तथा जून माह के लिए 2 चरणों में ग्रीष्मकालीन पुस्तक उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा और कला एवं संस्कृति विभाग और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से जून में 1 महीने की रंगमंच कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सिंधु जलयान लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 10 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल 25 तारीख को सुबह 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान परसों यानी 26 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान के लिए एमवी सेंटिनल कल 25 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान 26 तारीख को रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। सिंधु जलयान ननकौड़ी होते हुए कैमलबे की यात्रा पर 27 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान 29 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमलबे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाने के लिए कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी हटबे कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। इस जलयान की अगली यात्रा शहीद द्वीप के लिए कल ही दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से होगी और ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटन स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानीचंगा कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी जॉलीबॉय स्वराज द्वीप जाने के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा का शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और जलयान परसों यानी 26 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। गैरकानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसे किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 1120319223200 0319223077 और 0319223200। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभियां उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया प्यासा फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे प्रवीण भारद्वाज तथा संगीतकार थे डब्बू मलिक। अब सुनिए उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में परदेसी बाबू फिल्म का ये गीत। सुधाकर शर्मा के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंदराज आनंद ने।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के गाए परदेसी बाबू फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। दोस्तों, मनुष्य के विचार ही उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और व्यवहार से ही उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए सदैव सकारात्मक और अच्छे विचार रखना चाहिए। युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58। हमारा एसटीडी कोड है 031 92। तो दोस्तों, बढ़ते हैं।

0: कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैम सेवा लोहट, एमपी विदिशा से बातचीत कर रहा हूँ आपसे।
0: जी जी जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, और आज मैं पहला कॉलर बना हूँ तो बहुत खुशी हो रही है मैम।
0: अरे वाह रे वाह, हमें भी बहुत खुशी है कि आप हमसे जुड़े। वैसे आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं शिव जी?
1: मैम देखिए, मैं लगभग 10 साल की आयु का था,
0: अरे वाह,
1: जब से सुन रहा हूँ।
0: जी जी,
1: और अभी 40 वर्ष पूरे हुए हैं। आकाशवाणी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ मैं।
0: अरे वाह रे वाह, आपका भी धन्यवाद कि आपको आकाशवाणी के प्रति इतना प्रेम है। वैसे वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैम मौसम तो बहुत गर्मी वाला है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, दोपहर में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है।
0: बहुत ज्यादा अभी सभी जगहों पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है।
1: बिल्कुल मैम, और आज भी हम पुराने रेडियो को बहुत याद करते हैं मैम।
0: जी जी,
1: और हमारे पास है तो हम उनको काफी संभाल के रखे हुए हैं।
0: जी,
1: और आजकल मैकेनिक भी नहीं मिलते हैं मैम उनको सुधारने वाले।
0: अरे जी जी जी जी जी जी,
1: पर समय के साथ बदलाव तो होता है मैम, पर ऐसा है पुरानी चीज पुरानी ही होती है, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जी मैम।
0: जी जी, तो बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे पहले कॉलर बने और आपसे इतनी सारी बातचीत हुई। और अब वक्त हो चला है आपसे ये जानने का कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: मैम मूवी का नाम है रॉन्ग नंबर।
0: जी,
1: और गाने के बोले हैं, जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा, कुमार सानू जी की आवाज में।
0: जी, और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरी राजस्थान से,
0: जी
1: गोल्डी जी कांगड़ से,
0: जी
1: और हमारे भगवान सिंह परमार जी और अविनाश जी,
0: जी
1: और पुरुषोत्तम कुमार जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा मैम।
0: जी जी शिव जी, तो चलिए आपको और आपके सभी दोस्तों को सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: गुड इवनिंग
0: जी, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी, अनूप जी, कैसे
1: मेरा
0: हैं आप?
1: गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट
0: जी
1: है श्री भूमि,
0: जी
1: आसाम से तालुका से है
0: जी जी
1: ना।
0: आप असम से हैं, कैसे हैं आप?
1: मसाला बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ।
0: जी
1: और मतलब बाकायदा मेरा फोन लग ही गया आखिर तक,
0: जी जी
1: है ना। तो इसीलिए तो दिल
0: खुशी
1: मन
0: दोगुनी हो
1: गार्डन
0: गई
1: गार्डन हो रहा है, ना।
0: जी। अच्छा, गार्डन से याद आया, असम में जैसे चाय के बागान होते हैं, और कौन कौन सी जगह है वहां पर विशेषकर, आप हमें बताइए।
1: जी, असम तो चाय के बागान के लिए तो फेमस है, लेकिन
0: जी,
1: फिर भी वहाँ के हमारे जो कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या
0: जी जी जी जी
1: मंदिर नीलाचल पहाड़ के ऊपर कामाख्या
0: जी
1: मंदिर है। ये तो भक्तालु जो भक्त सज्जन तो जमायत होते हैं और बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं
0: जी जी जी जी
1: गुवाहाटी के।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: तो
0: वैसे जी, वैसे तो आपसे और भी
1: ऐसे
0: बातें
1: में
0: होंगी।
1: नेचुरल जो ये सीनरी
0: जी
1: जो है वो तो एकदम असम है, वो
0: जी
1: तो अनगिनत क्या कहो नजारे है। तो
0: बहुत सुंदर जगह है असम, वाकई।
1: तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा,
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: है ना।
0: बहुत सुंदर शायरी
1: जी,
0: थी। जी।
1: तो चलिए आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता
0: जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल
1: गाने का बोल ऐसे है, फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने
0: जी।
1: का बोल ऐसे, जिंदगी प्यार का गीत है, ऐसे करके
0: इसे
1: गाने
0: हर
1: को, और
0: दिल
1: कुछ
0: को
1: लुत्फ में
0: गाना पड़ेगा। आपको
1: बस
0: गुनगुनाते
1: बहुत
0: हुए सुनकर मुझे भी मन कर गया
1: क्या
0: गुनगुनाने का। बहुत
1: बात,
0: सुंदर
1: क्या बात।
0: आवाज है सर आपकी। जी
1: जी, तो
0: जी
1: चलिए मैम कुछ दोस्तों को मैं याद
0: बिल्कुल
1: करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल जी।
1: पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, दिल के एकदम किनारे है वो
0: जी
1: दोस्त, जिसका नाम है अमर सिंह साहू जी,
0: जी
1: और बसंत लाल सूर्यवंशी जी है, अनवर बिहारी भाई जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, और हमारे लंगटिया दोस्त है जिसका नाम है प्रेमजीत चक्रवर्ती
0: जी
1: जी है,
0: जी
1: और ओम प्रकाश नेमा जी, सिपरा जी है, और सप्तमी कुंडू जी के लिए,
0: जी
1: और श्रीकांत जी के लिए। तो
0: जी जी
1: चलिए बातचीत को यहीं पे विराम
0: जी
1: देता हूँ।
0: जी तो ठीक है, हम आपका ये मनचाहा गीत भिजवा रहे हैं असम, सुनिए।

0: दोस्तों, हम आपको बता दें, ये गीत फिल्म सौतन से लिया गया है किशोर कुमार जी की आवाज़ों में। तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स,
1: नमस्कार। शुभ संध्या
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैम, और फोन लगने से तो और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: जी, चल चलिए, आपकी इस खुशी को और भी दोगुना करते हैं और आपसे जल्दी से जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनेंगे।
1: तो मैम जी, जिस गाने में समीर जी जैसा लिरिक और नवीन सावंत जी जैसा म्यूजिक डायरेक्टर और कुमार शानू है,
0: जी,
1: इस टाइप का गाना कभी फ्लॉप नहीं है।

0: जी
1: तो मैम जी, आप मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आशिकी,
0: जी
1: गाने का बोल है नजर की छाप में, अनुराधा पटवारी जी और शानू दा ने गाया है गाने को,
0: जी जी जी
1: और आपका इजाजत हो तो मैं दो चार प्रश्न भी
0: बिल्कुल
1: आपसे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैम जी। पहले आप सुनेंगे
0: जी
1: सुनेंगे पूरन वर्मा राकेश जी शिमला से, भगवान सिंह शर्मा त्रिपुरा से, अविनाश कोहली आसम से, रणवीर चक्रवर्ती और केसरी सिंह राजपूत, राम बाबू शर्मा मंगीलाल जी और नेटवर्क का सारे सब सुनना
0: जी। तो आइए हम आपका ये मन चाहा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: नमस्कार बहन जी, मांगीलाल चंदेल जी से बात हो रही है, जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे जानते हैं।
1: बस बढ़िया हूँ बहन जी, आपकी दुआ से मैं बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी जी, वैसे आज रविवार,
1: आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हों।
0: जी जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपका दिन कैसा बीत रहा है?
1: बढ़िया बीता, बढ़िया बीत रहा।
0: जी जी जी जी, कहीं घूमने गए आप?
1: बहन जी वो थोड़ी आवाज
0: जी जी
1: कम आ रही है,
0: जी जी जी।
1: इसलिए मैं अपना जो मैंने गाना बताया है फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का
0: जी,
1: वो हंसी कनकाने वाले
0: जी
1: आ गए, वो लगा देना आप।
0: जी जी
1: की ले लो भैया, बहन कच्ची मैं पर लगा रहा हूँ। और मेरे कुछ मित्र रहेंगे
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: केसरी सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, लोकेन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, गजराज सिंह लोधी जी हैं
0: जी,
1: और नरेश प्रजापति, इन सभी को डेडिकेट रहेगा। मुझे बात करने में ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़े, आपने अपना मनपसंद गीत बताया, हमें लाइक बहुत खुशी हुई। चलिए तो आपको सुनवाते हैं जल्दी से आपका ये मनचाहा गीत।

दोस्तों अगले माफ़ कीजिए दोस्तों अगले रविवार भी हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 और 2355। हमारा STD कोड है 03192। तो दोस्तों अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी को इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम दोनों फिल्म के इस गीत से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है जयदेव ने।

अभी आप किशोर कुमार का गाया जहरीला इंसान फिल्म का गीत सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीतकार थे आर डी बर्मन। अब राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार कार्यक्रम का अगला गीत है बॉम्बे टू गोवा फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

0: बैठे हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ू?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझू?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ ना।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी के स्वर में वारिस फिल्म का गीत सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने।

अभी आप राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना सुन रहे थे, जिसे संगीत में ढाला था सी रामचंद्र ने। गायिका थी लता मंगेशकर और फिल्म थी अनारकली। अब पेश है यादों की बारात फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए यादों की बारात फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज FS अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक पद जो केवल OBC वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी फायरमैन PC FS के लिए कुल पद है 77, अनारक्षित वर्ग के लिए 41 पद, 29 पद OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर FS कुल पद है 17, अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, 6 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद होगा। सफाई कर्मचारी FS के लिए कुल पद है 2, OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है।

0: फॉलोवर कुक एफएस के लिए एक पद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर दफ्तरी के लिए एक पद रिक्त है जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। इंडिया रिजर्व बटालियन IRBN अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए एक पद है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल पद है 29, अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 12-12 पद है। ST अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। कांस्टेबल वायरलेस के लिए कुल पद है 2 जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। नर्सिंग असिस्टेंट, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाटर कैरियर, इन सभी पदों के लिए एक एक पद है जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़े। पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23

0: कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में

0: में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
0: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: इम्पोर्टर ऑफ एनर्जी एंड मच ऑफ इट कम्स फ्रॉम दैट रीजन।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy, trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रोशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया Sri Lal Mohan Bhattacharya is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Hauru Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11:51 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती पर कल सुबह 6:00 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि तदनुसार 25 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:28.36 हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कल की गलतियों से सीखकर आज को बेहतर बनाना ही जीवन की सच्ची प्रगति है। नई सुबह हमें याद दिलाती है कि उम्मीद और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मातृ वंदना।